0: Definitely,
1: yeah.
0: But like me, you don't get one.
1: Huh?
0: Let me just make that clear. Now,
1: I love
0: that.
1: Yeah.
0: Inshallah, we are.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa
0: iyyaka nasta'in. Makes us better people, you know. Person has got like the, you know, the best way, and you know, and all of that. And don't live in that.
3: दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो फिर उसके बाद रब का कुरान
0: फाइंड प्लेजर एंड जॉय इन यू नो शुड फाइंड इन योर हस्बैंड शुड फाइंड इट इन योर स्पाउस अल्लाह ताला हैज मेंशनड दिस इन द कुरान इन सिंपल वर्ड्स फोकस ऑन योर ओन प्लेट ऑफ फूड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन समवन एल्सस प्लेट ऑफ फूड यू डू गेट गुड हस्बैंड इन योर हस्बैंड
4: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इलाही मैं हूं बस
0: But you get girls that are not good either. But then the food tastes nice.
5: I see the brother in Pretoria.

0: mean, she's a husband, but remember, this happened with the will of Allah. So we should accept that and make our marriage work. Be positive. And Mutsab, I have done the above and chose my two son-in-laws. And shukr, we get along well. And they have come in 20 years of the marriage. And I am 43 years in my marriage. Alhamdulillah, Ustad.
1: वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है फिरदौस
2: बी इन कंट्रोल लाइक सम पीपल फील लाइक दे आर इन कंट्रोल लाइक आई देयर इज अ लॉट ऑफ बरकत एंड गुडनेस इन दैट बट देयर इज गुड